0: है लाइका गोल्ड.
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
1: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
4: गारंटेड.
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
4: फोन 02085748410.
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: But how? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simzy before we left London.
5: Simzy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
1: फिर
0: फुर,
1: फुर,
0: फुर, फुर।
2: बताओ नी बड़ी क्या बात हुई।
0: कह दो
2: कह दो
0: कह दो
2: कह दो

0: रघुकुल रीत चला चती चल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचाना ना जाई
1: जाई जाई
0: बन चले।

0: Laika Gold. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ. हमारे राम. बुक योर टिकट्स नाउ. विजिट www.eventimapolo.co.uk. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
1: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
2: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
3: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
1: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
2: Thanks. Playtime's over. Lovely.
4: Feel the fun. Play Ojo.
5: 18 plus gamble aware.
6: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
7: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत.

0: Striker Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

परी ये सुबह मस्त भरी यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद।

0: officially London's number one Asian commercial radio group.
1: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: है लाइका गोल्ड। सेवन स्टेशंस, वन पॉडकास्ट, वन मोबाइल ऐप। Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
1: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

जिन सेव्या तिन पाया मान, नान गाविये गुणी निदान। गाविये सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रया समाई। गुरीसर गुर गोरख बर्मा गुर।

सुनिए हाथ वैसगा, नानक भक्तां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे

मन कोय। मन्ने सुत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

हत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध

अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

0: मीठा गाना था लता जी के आवाज में फिल्म हीर रांझा से, और ये गाना जब फिल्म आई थी तब हिट हुआ होगा, लेकिन आज तक सुपर डुपर हिट है और इस तरह के गाने कभी पुराने हो ही नहीं सकते। और उससे पहले आपने आर डी बर्मन की आवाज़ में शोले फिल्म का गीत सुना। और लीजिए, दो गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, या कहूँ ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। तो जहाँ कहीं भी हमारे साथी साथ दे रहे हैं, सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, और उम्मीद है आप सब बिल्कुल मजे में हैं और मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो इस हफ्ते में थर्सडे फ्राइडे भी आपके साथ थी, लेकिन वीकेंड पर आने का कुछ अलग ही बात है। मेरे पूरे लिसनर्स जो हमेशा सालों से मुझे वीकेंड पर सुन रहे हैं, वो सब मेरा साथ देने के लिए आ चुके हैं, और सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आपको बताते चले कि मैं हूँ ऋतु शर्मा, और ये है आपका मनपसंद लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहाँ भी साथी सुन रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, तो बस साथ देते रहिए। जैसे दो गाने मैंने बजाए, ऐसे ही गाने एक बजे तक सुनवाती रहूँगी, क्योंकि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारे क्लासिक्स। यस,
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो भाई, भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं तो वो आप वही हमेशा की तरह SBI बैंक के थ्रू, ब्रांच के थ्रू, योनो ऐप के थ्रू ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। आज 1 pound के बदले में आपको 127.3 भारतीय रुपए मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा आपको हम फिर से बता दें कि एंड ऑफ जून तक आप विन कर सकते हैं 75 pound का वाउचर एवरी डे जब आप मनी भिजवाते हैं 1000 pound, एंड ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.

0: म्यूजिक है ये लास्ट वाला, मैं लिटरली इसके साथ गा रही थी और मुझे ये गाना बहुत मजेदार लगता है। एस पी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाजों में, अंदाज अपना अपना फिल्म का था ये गाना, जिसमें तुषार भाटिया और विजू शाह का म्यूजिक था। और बस यही कहूंगी कि आई लव दिस ट्रैक, और ये गाना मेरी ओर से आप सभी के लिए था जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे और ढेर सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचाए। तो चलिए एक नजर डाल ली जाए।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आप सब लाइका रेडियो नेटवर्क सुन रहे हैं, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और मेरा नाम है रितु शर्मा। एक बजे तक यहीं आपके मैं साथ रहूंगी, और हमारे साथियों ने बहुत सारे मैसेजेस भिजवाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे बहुत प्यारे लिसनर गुरविजय जी आपके मैसेज के साथ, और आपने आज भी आज का विचार भिजवाया है, और इसमें बहुत ही पते की बात है, ध्यान से सुनिए। लिखा है, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले एक बार कोशिश करना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो, और सबसे पते की बात, मरने से पहले खुलकर जीना सीखो, क्योंकि ये जो खूबसूरत जीवन है ना, एक ही बार मिलता है। जी भर के जिए, जब तक जीवित है जब तक है, मरने के बाद सब कुछ खत्म, आंख मुदी सब कुछ खत्म। बहुत ही सुंदर मैसेज आपने हमारे साथ शेयर किया है विजय जी, स्वागत है आपका इस शो में। और हमारे साथ है हमारे हरीश खत्री जी, गुड मॉर्निंग। दिव्या जी गुड मॉर्निंग, संध्या जी, विनोद जी नॉर्थ होल से, प्रकाश जी, प्रदीप सोलंकी जी ब्रैकनेल से, कैंट से सलमा जी, स्लाव से सुरजीत जी, निर्मला जी, सहर जी हमारे साथ है, राजेश जी थैंक यू, आपने लिखा है आपको धूप से भरी शनिवार की सुबह की बहुत बहुत बधाइयाँ, आई लव इट, थैंक यू। और आपने भी लिखा है कि हर सूर्योदय एक नया मौका लेकर आता है हमारे पास, हर दिन नई शुरुआत करने और सही फैसले लेने का मौका होता है, बस ईश्वर करे हमें इतनी शक्ति दे कि हम हर समय सही मौके को अच्छी तरह से यूज कर पाए। थैंक यू साथ देने के लिए, थैंक यू अर्जुन जी, जयंत एंड मीना जी, मोहम्मद अयूब चौहान सुन रहे हैं हमें वियाना में, अनिल जी है, मृदु जी, तोची जी में से शेख, और जितने भी साथी हमेशा की तरह घर में, गाड़ी में, बाहर गार्डन में, किचन में, काम पर, शॉप पर, जहाँ भी है, सभी का स्वागत है। और ये गाना एक बार फिर से मेरी ओर से आप सब के लिए।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: जी हाँ, कल्याण जी आनंद जी की धुन और उस पर अमिताभ बच्चन की आवाज गाने में लगाती है चार चांद। और ये गाना मैं कहूंगी तब भी बहुत पॉपुलर हुआ था और आज भी देखिए क्या कमाल का लगता है। और मैं सोच रही थी कि इस गाने को किसने लिखा होगा, क्या सोचकर लिखा होगा। और जब मैंने पता किया तो अनजान या प्रकाश मेहरा जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन दोनों में से किसी ने ये गाना लिखा है। लेकिन जिसने भी लिखा है कमाल का लिखा है। और देखिए, अगर राजेश रोशन उस दिन अमिताभ बच्चन को इंसिस्ट नहीं करते मिस्टर नटवरलाल फिल्म का गीत गाने के लिए, तो क्या अमिताभ बच्चन इस गाने को गा पाते इतना कॉन्फिडेंटली? जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। और ये गाना आप सबने पसंद किया है, थैंक यू सो मच। आपके मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, थैंक यू फरजाना साथ देने के लिए, थैंक यू प्रज्ञा कहती है हमारे घर में आपका स्वागत है, तो हमारे भी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मिसेस चियांग बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर नरेंद्र पाठक स्वागत है आपका। एंड ऑफकोर्स हमारी अरुणा जी हमारे साथ हैं। तो आप सभी हमारे साथ हैं तो बस साथ देते रहिए, क्योंकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में होती हैं यादें। और आज की यादें मैं बात करने वाली हूँ उनकी, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म्स बनाई हैं, जिनके गाने आपको पसंद हैं और जिन्होंने एक मिस्ट्री थ्रिलर्स बनाई हैं। और नाम बता देती हूँ, उनका नाम है राज खोसला। आज राज खोसला को याद करूँगी यादें में प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: तो अगला गीत सुनाने से पहले हम आपको याद दिलाते चलें कि भाई हमने आपको पहले भी बताया था कि डेन्यू प्रॉपर्टीज जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है हैरो में, अब उनका नया ऑफिस खुल रहा है नाइट ब्रिज में। और आज सैटरडे को उसकी ओपनिंग है और आज हमारी लाइका टीम वहाँ पहुँचने वाली है और वहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली है। 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये सब काम होगा। आप भी चाहें तो जा सकते हैं, अगर आप दुबई में प्रॉपर्टीज़ खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप वहाँ पहुँच जाइए, आप वहाँ उनसे बात कर सकते हैं। और ये जो है हम आपकी उनसे वहाँ हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं उनसे हम आपकी लाइव बातचीत भी करवाएंगे प्रोग्राम के नेक्स्ट वाले आवर में। तो आप हमें ज़रूर सुनते रहिए और साथ ही साथ आपको मैं बताती चलूँ कि अपडेट्स के लिए आप हमें लाइका रेडियो के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जिस पर फॉलो कर सकते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड, रितु शर्मा लाइव ऑन लाइका गोल्ड ग्रेटर लंदन।
0: बिल्कुल। और अगर हॉलिडे जाने का प्लान कर रहे हैं, समर आ गया है, तो साउथ होल ट्रेवल है ना, कॉल कीजिए उन्हें 0208-574-8410 पर या फिर विजिट कीजिए साउथ होल ट्रेवल। आपके ट्रस्टेड भरोसेमंद 40 साल से आपकी सेवा में है और इन्होंने ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड भी जीता है। तो हॉलिडे बुक कराने के लिए कॉल कीजिए साउथ हॉल ट्रैवल को, आई रिपीट, ऑन 0208-574-8410 पर।
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: सीटीवी एंड सी5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम, प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई, इवेंट इन अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
7: बी पार्ट ऑफ ए हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग,
8: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस। अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल जर्नी।
7: ट्रेवल विद योर फैमिली एंड विटनेस दिस डिवाइन ओकेजन अलोंग विद द आईफिल टावर, सेंट रिवर क्रूज एंड अ पेरिस सिटी टूर।
8: डिपार्चर 5th of September। कॉल नाउ ऑन 02037736333।
7: मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रेवल मंत्रा?
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
12: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Kenton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
13: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
14: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
13: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
16: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
17: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Like a radio network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
18: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: लीजिए लता जी और शैलेंद्र सिंह की आवाज में चलते चलते फिल्म से था ये गाना जो 1976 में आई थी और बप्पी लहरी का म्यूजिक था। मिस्टर नरेंद्र पाठक, ये गाना आपको पसंद है, आपको डेडिकेट करते हैं ये गाना। और इसके अलावा हमारी एक और प्रज्ञा है, आपका नंबर एंडिंग है 570, आप अपना नाम पूरा बताइए क्योंकि हमारी एक और प्रज्ञा है। तो मैं दो प्रज्ञा मतलब किस तरह से बोलूँ तो आपके सरनेम हो जाएगा, तो मैं आपको आपके सरनेम से बोल सकती हूँ कि ये प्रज्ञा ये है, ये प्रज्ञा ये है। तो मुझे अपना सरनेम ज़रूर लिख कर भेजिए। स्वागत है आपका इस शो में। और इसके अलावा हमारे साथ हैं कौन जिन्होंने नाम लिखा है, परेश व्यास जी स्वागत है आपका। श्वेता जैन का आज ड्राइविंग टेस्ट है और योगेंद्र जैन चाहते हैं कि मैं उनको शुभकामनाएं बोल दूं। भाई मैं बिल्कुल शुभकामनाएं बोलूंगी और मैं कहूंगी कि आप बिल्कुल पास ही हो जाइए क्योंकि ये ड्राइविंग टेस्ट मैंने देखा है बहुत बड़ा हेडेक होता है और कई लोगों ने न जाने कितने अटैम्प्ट में टेस्ट पास किए। वैसे मैंने तो पहली बार में पास किया था, मैं सच बता दूँ और बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने 17 टाइम्स टेस्ट दिया है और उसके बाद भी वो पास नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे आप एक बार फेल हो जाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लूज हो ही जाता है। तो बस मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल जल्दी से पास हो जाइए श्वेता। और इसके बाद आपको याद दिला दूँ कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में होंगी यादें जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राज खोसला के बारे में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 127 पाउंड्स 127 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now.

0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So Gold Rate is 109.4 pounds per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold.
0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: तो भाई अब IPL अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। कल राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मैच था, जिसे गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से जीत लिया। और कल गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच में है फाइनल मैच IPL का, जिसके बारे में हम आपसे जरूर बात करेंगे। हम आपको जरूर उसका अपडेट बताएंगे। आप हमारा साथ देते रहिए।
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: Ye hai Like a Gold, 10:35 AM.
4: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
5: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
6: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
4: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
5: Thanks. Playtime's over. Lovely.
7: Feel the fun. Play Ojo.
8: 18 plus, gamble aware.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
10: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
11: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
10: ये तो बताओ, कोई पता चला?
12: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
10: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
12: शीघ्र शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
13: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक अ गोल्ड। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
14: 105 सुपर हिट शोज पची हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रहा छे सखना रेजो हस्बैंड जी, लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्य नी फुल गारंटी। फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखना रेजो हस्बैंड जी।
15: Search is changing.
16: Customers aren't just using Google anymore.
15: They're asking AI.
16: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
15: One business, one recommendation.
16: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
15: Will your business be the answer?
16: Or the one that got left behind?
15: The future of search has already started.
16: Have you? Visit HeartyHanks.com and make sure AI recommends you.
15: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
17: रामकृष्ण हरी यूके, फील द पावर ऑफ महाराष्ट्र। दिस 6th जून एक्सपीरियंस वाद्य महोत्सव 2026 लाइव एट रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल, 80 ताशा, परंपरा, संस्कृति और फुल ऑन जोश का मेगा सेलिब्रेशन। भारत से यूके तक एक ही रिदम, एक ही प्राइड। टिकट्स लाइव नाउ एट svrtuk.org। लाइका लिसनर्स गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, यूज कोड लाइका 10। वाद्य महोत्सव 2026, फील द बीट, लिव द लेगेसी।
2: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
8: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
18: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Like a Gold.

0: deal with threats.
1: He's in Singapore along with fellow defence chiefs Pete Hegseth and Richard Marles. 500 households in Kent are still without water. South East Water says it's restored supplies to 15,000 customers after recent hot weather caused disruption. And fans of Arsenal and Paris Saint-Germain are taking over Budapest ahead of this evening's Champions League final. Mikel Arteta's side are trying to win the trophy for the first time, while PSG are the defending champions. From Sky News, I'm Kat Suave.
2: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
3: With Little Plus, say yes to making more of the moments you value this summer. And enjoy 15% off a selected range of deliciously juicy sausages, perfect for the sunshine. We've got everything you need and more to make the perfect barbecue. Lidl, more to value. 18 plus GB only while stocks last. T's and C's apply. See lidl.co.uk/LPTV. Offer ends 3rd of June.
2: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
4: गुड मॉर्निंग, आइए हो जाए मौसम की बात। और आज मौसम में सनशाइन देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोपहर में कहीं से कुछ बादल आ सकते हैं, लेकिन गर्मा गर्म मौसम रहेगा। लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्रीज, मैनचेस्टर में 23 डिग्रीज एंड मिडलैंड्स में 25 डिग्रीज के आसपास रहेगा।
2: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. This is Leica Gold. Ritu
4: Sharma. जी हाँ, बिल्कुल, ये है प्रोग्राम का सेकंड आवर और मैं हूँ रितु शर्मा। और आज हम याद करने वाले हैं राज खोसला को, जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने वो कौन थी, मेरा साया जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई। सुनाती हूँ। Like
2: Gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
5: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
6: TravelHub.
5: At all protected.
2: Leica. Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Leica Gold.

0: लता जी की आवाज में था ये शानदार गाना, जिसे लिया था फिल्म अनीता से, जिसे डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। और उससे पहले आपने दो चोर फिल्म का गीत सुना, जिसमें किशोर दा और आशा भोसले की आवाजें थी, और इस गाने को प्रोड्यूस किया था राज खोसला ने। तो आज हम राज खोसला के बारे में ही बातें करने जा रहे हैं, उन्हें यादें में याद करने जा रहे हैं। कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और कल भी उनके बारे में बात होगी, लेकिन फिलहाल तो आपको बता दूं कि राज खोसला हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही प्रभावशाली और सफल डायरेक्टर्स में से एक थे, और जिन्हें विशेष रूप से उनकी नवाबी शैली, थ्रिलर फिल्मों और बेहतरीन संगीत की नॉलेज के लिए जाना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राज खोसला बचपन से ही एक सिंगर बनना चाहते थे। जानते हैं वो ऑल इंडिया रेडियो में एक सिंगर के रूप में भर्ती होने के लिए मुंबई आए थे। जी हाँ, और जब वो मुंबई आए तो उनकी मुलाकात हुई उस जमाने के जाने माने डायरेक्टर, एक्टर, कोरियोग्राफर गुरुदत्त से, जिनके साथ उन्होंने एज ए असिस्टेंट अपने करियर की शुरुआत की थी। और गुरुदत्त ही थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनसे कहा कि ये सिंगिंग विंगिंग छोड़ के तुम डायरेक्शन में अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो। और गुरुदत्त की नज़र पारखी थी, और देखिए राज खोसला ने क्या खूबसूरत फिल्म्स बनाई हैं। ब्लैक एंड वाइट जमाने से लेकर रंगीन जमानों का दौर आया, तब तक राज खोसला को एक स्टाइलिश डायरेक्टर माना जाता था। उनकी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, वो कौन थी, CID, मेरा साया, अनीता, और इन सब फिल्मों में सस्पेंस था। लेकिन उनके करियर की सबसे पहली जो फिल्म थी वो थी CID, और ये फिल्म कितनी सुपरहिट थी ये आप सब जानते हैं। उनके बारे में आज कुछ बातें और उनसे जुड़े कुछ किस्से मैं आपको सुनवाऊंगी, और साथ ही साथ डेन्यू प्रॉपर्टीज पर आज हमारे साथी हैं, पहुंचे हैं, तो उनसे भी आपकी बातें होंगी। लेकिन उससे पहले
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं तो भिजवा सकते हैं SBI ब्रांच के थ्रू ऑनलाइन या फिर यूनो ऐप के थ्रू, और आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.3 भारतीय रुपए। और इसके अलावा आपको बता दें कि बिफोर एंड ऑफ जून आप 75 pound का वाउचर एवरीडे विन कर सकते हैं, जब आप पैसा 1000 pound से ऊपर भिजवाते हैं। और इसके अलावा 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक when sending over 2,000 pounds. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car instead of selling privately. We Buy Any Car can get it sorted in under an hour, so no weekends watching randoms inspect your car to not even buy it. If only they could make finding where you park simpler.
4: Was it floor 2 or 3? I swear I parked here. Where is it?
3: We Buy Any Car. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at webuyanycar.com.
5: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
6: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
7: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
7: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334 24 hour line.

0: ऐसे
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर
2: हर मौके पर काम ये आए घर घर खुशियां लाए
1: जहां जिंदगी वहां सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: राम कृष्ण हरी यूके तैयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव टिकट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org जय हरी विठ्ठल
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
6: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
7: ईमेल नाउ info@royalchayvending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
8: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप
9: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स
8: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स
9: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स देसी स्वैग इन एवरी बैग
10: लाइक अ गोल्ड लंदन का नंबर 1 एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे
11: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: डायरेक्टर राज खोसला की फिल्म दो रास्ते से था ये गाना, और ये फिल्म कितनी बड़ी हिट हुई थी हम सब ये बात जानते हैं। Feel good track
1: brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो राज खोसला के जीवन से जुड़े बहुत सारे किस्से हैं, उनमें से कुछ किस्से मैंने आपके लिए सुनाने वाली हूँ। कुछ किस्से मैंने चूज किए हैं। ओहो, गले में क्या हो गया।

0: अब एक किस्सा सुनाने वाली हूँ, एक गाने से जुड़ा हुआ, जो इन्हीं की फिल्म से लिया हुआ है और बहुत ही मशहूर गाना है। हम सब जानते हैं कि फिल्में उनकी कमाल की हैं और उनके गाने कमाल के हैं, तो ये किस्सा फिल्म मेरा साया से जुड़ा है। जब शूटिंग हो रही थी, रिकॉर्डिंग हो रही थी झुमका गिरारे गाने की, इस गाने में मदन मोहन का संगीत है और आशा भोसले ने इस गाने को गाया है। और जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो राज खोसला चाहते थे कि इस गाने में बेहद खास और खूब सारी एनर्जी हो। रिकॉर्डिंग के समय राज खोसला हर अंतरे और हर अलाप में एक खास तरह का मस्ती भरा अंदाज चाहते थे और इसलिए वो बार बार आशा भोसले से रीटेक करवा रहे थे। मदन मोहन के लाख समझाने के बाद भी राज खोसला संतुष्ट नहीं हो रहे थे। बार बार रीटेक, बार बार रीटेक, और राज खोसला की सख्ती से तंग आकर आशा भोसले इतनी परेशान हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने गुस्से में कह दिया कि अब वो ये गाना नहीं गाएंगी, किसी और से गवा लो। राज खोसला ने बड़े ही प्यार से उन्हें मनाया और उन्हें समझाया कि वो सिर्फ बेहतरीन नहीं बल्कि ऐतिहासिक काम करना चाहते हैं। और आखिरकार उनकी मनपसंद से गाना रिकॉर्ड हुआ और जब गाना फाइनल हुआ तो आप जानते हैं कि इस गाने ने क्या कमाल किया। और आज भी भारत के जब सुपरहिट गानों का नाम आता है तो उसमें इस गाने का नाम भी जरूर आता है। अब इस गाने की इतनी बात की है तो चलिए हो जाइए गाना।
1: ये है लाइका गोल्ड। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: Jhumka gira re

0: आशा जी की आवाज में गाना बहुत सुपर हिट हो गया और इसमें साधना जी का डांस भी काफी पसंद किया गया। लेकिन आपको बता दें कि जब इस गाने की इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और साधना जी कोरियोग्राफर के हिसाब से डांस कर रही थी, तो थिरकते हुए अचानक साधना जी का पैर मुड़ गया था और कुछ देर के लिए शूटिंग को रोकना पड़ा था। लेकिन जब राज खोसला ने देखा कि साधना का जब पैर मुड़ा और उन्होंने दर्द और संकोच में अपना एक हाथ कमर पर रख लिया और पैर को थोड़ा सा झटका दिया, और कोई आम डायरेक्टर होता तो कट बोल देता, लेकिन राज खोसला पारखी नज़र वाले थे और उन्होंने जब साधना ये सब कर रही थी रिकॉर्डिंग चालू रखी और साधना से कहा कि तुमने अभी जो पैर मटका कर हाथ कमर पर रखा है, अब देखना वही इस गाने का हुक स्टेप होगा। साधना जी हैरान थी, उन्हें लगा कि वो तो उन्होंने दर्द में किया था, लेकिन राज खोसला ने जब उन्हें म्यूजिक के साथ और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ वो उनका कमर का झटका, पैर का झटका दिखाया, तो साधना जी भी हैरान थी। और राज खोसला के कहने पर पैर में दर्द होने के बावजूद उन्होंने उसी अंदाज में बार बार उस स्टेप को किया। और देखिए, आज भी जब कोई झुमका गिरा रे गाता है या फिर उस पर नाचता है तो अनजाने ही उसका हाथ कमर पर चला जाता है और उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये साधना जी ने चोट में ही ऐसा किया था। ऐसे और भी बहुत सारे किस्से हैं, मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको मैं बताती चलूं।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: तो राज खोसला की फिल्म से एक और गीत सुनवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले खुशखबरी है हमारे किशोर कुमार के फैंस के लिए। आपके लिए एक बार फिर से आ गया है क्रेजी फॉर किशोर, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट जिसमें केतन, इंद्राणी, संजय और द 515 बैंड परफॉर्म करने वाले हैं। और ये होने जा रहा है फ्राइडे 19 जून को एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में। टिकट्स अवेलेबल है eventbrite.co.uk पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0208-514-5400 पर। और इस प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं हम, यानी कि लाइका गोल्ड रेडियो।
2: दिस इज रितु शर्मा, लाइका गोल्ड, रितु शर्मा ऑन लाइका गोल्ड।
3: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by morning mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., like a gold and like a radium Midlands. Yep.

0: राज खोसला की फिल्म में देवानंद थे, 16 साल इस फिल्म का नाम था। और आपको बता दें कि राज खोसला और देवानंद की जो दोस्ती थी ना और उनका जो साथ था वो हिंदी सिनेमा के सबसे सुनहरे पन्नों में से एक है। देवानंद ने ही राज खोसला को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे पहला बड़ा ब्रेक दिया था और वो थी फिल्म CID। इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाती हूँ। राज खोसला गुरुदत्त के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और देवानंद और गुरुदत्त बहुत पक्के दोस्त थे और दोनों ने ही मिलकर नवकेतन फिल्म्स की शुरुआत की थी। देवानंद और गुरुदत्त ने संघर्ष के दिनों में एक वादा किया था एक दूसरे से कि जब गुरुदत्त डायरेक्टर बनेंगे तो देवानंद को हीरो लेंगे और जब देवानंद प्रोड्यूसर बनेंगे तो वो गुरुदत्त को डायरेक्शन का मौका देंगे। देवानंद ने गुरुदत्त की फिल्म आर पार के सेट पर जब राज खोसला के काम करने का स्टाइल और उनकी फुर्ती, उनका विजन देखा तो देवानंद राज खोसला के दीवाने हो गए। जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाने की घोषणा की तो उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि गुरु, अब मुझे तू नहीं, तेरा असिस्टेंट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये असिस्टेंट बनकर ना रह जाए, मैं इसे डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो नवकेतन फिल्म्स बैनर की जो पहली फिल्म है उसे ये ही डायरेक्ट करे। और इस तरह से देवानंद ने राज खोसला को मौका दिया। फिल्म का नाम था CID और ये फिल्म बनी ब्लॉकबस्टर और इसी फिल्म ने देवानंद को भी और राज खोसला को भी रातों रात स्टार बना दिया। तभी तो देखिए राज खोसला की बहुत सारी फिल्मों में देवानंद है। चलिए अब एक और गीत सुनवाती हूँ, इसमें देवानंद नहीं है, इसमें उन्होंने धर्मेंद्र को लिया है। सुनवाती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट आ गया है और इसका नाम है, टाइटल है मेनोपॉज, जिसे होस्ट किया है रूबी रजा ने। और ये पॉडकास्ट हमारा अवेलेबल है यूट्यूब पर, अमेजन पर, एप्पल एंड जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर लाइका पॉडकास्ट अवेलेबल है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Visit travelhubworld.com।
2: Travel hub best, sab kare test, Disha rice ka hai zamana, Disha basmati rice.
1: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kachha Bazaar, Sameer Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
3: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
3: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
4: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
3: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
3: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
7: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
3: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
7: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
3: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
7: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
3: Apple Pay is available on compatible devices. Terms, conditions apply.
7: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
8: KMB with Shanila presents London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show. Top designers from Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan and Middle Eastern communities showcasing stunning bridal collections live on the runway. Planning a wedding? Find everything under one roof. Plus, enjoy Qawwali Night by Ahmed Shah and group. Happening on Friday the 12th of June at the Willows from 1pm till late. Tickets on Eventbrite. Call 07989 972 879.
9: સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
10: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
9: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
10: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
9: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
10: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
9: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
10: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
11: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
12: No more worries for me.
3: Southall Travel, at all protected.
13: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
14: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: officially London's number one Asian commercial radio group.
1: Three heroes, one mission, to hijack snacks. Introducing new corn protein bites.
2: Wait, are we the heroes?
3: Of course we're the heroes.
1: These snacks are high in protein and ready to eat.
2: Why are you doing the serious voice?
3: Yeah, why are you doing the serious voice?
4: I was trying to make it cooler.
1: Find new corn protein bite snack bags in supermarkets nationwide. Corn, so tasty. Why choose the alternative?
0: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
5: गुड आफ्टरनून, आइए बात हो जाए मौसम की। और आज मौसम मिला जुला है, कभी धूप कभी छांव, लेकिन गर्मी चरम पर है। आज लंदन में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री तक जाएगा, मैनचेस्टर में 23 डिग्रीज एंड मिडलैंड्स में 25 डिग्रीज के आसपास।
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
6: Like a gold.
2: Ritu Sharma. Yes, सही सुना आपने, मैं हूँ रितु शर्मा और ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर। और इस आवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस आवर में हम खेलते हैं थ्री वर्ड्स गेम और सुनवाती हूँ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी, लेकिन पहले बजेंगे दो गाने बैक टू बैक।
0: लाइक अ गोल्ड, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक, स्पॉन्सर्ड बाय travelhubworld.com। फॉर द बेस्ट सर्विस एंड अनबीटेबल प्राइसेस विजिट travelhubworld.com। travelhubworld.com,
7: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
8: ट्रेवल हब
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Leica Ritu Sharma live on Leica Gold Greater London।

0: पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
1: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208514540। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Daniel, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
8: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
9: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
10: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
9: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
11: Be part of a historic grand opening.
12: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
11: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
12: Departure 5th of September. Call now on 02 03 773 633.
11: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
14: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
15: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: यस अनुराधा पौडवाल की आवाज में था ये गाना और वही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और आप में से कुछ साथी चाहते हैं कि थ्री वर्ड्स गेम को फिर से रिपीट किया जाए, थ्री वर्ड्स को, तो आज के तीन वर्ड्स हैं रात, याद, दिन। रफी साहब की आवाज, 1965 की फिल्म और एस डी बर्मन का म्यूजिक। कौन सा है ये गाना? आप जब तक सोचिए तब तक मैं शुरू करती हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला और सुनवाती हूँ आपको पहला गाना।
1: ये है Laika Gold
2: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: यस, आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना लता जी के आवाज में फिल्म थी अनाड़ी, 1959 की फिल्म। और बहुत सारे साथियों ने आज के थ्री वर्ड्स गेम के सही जवाब दे दिए हैं।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
0: तो जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम मैं बताऊंगी इस गाने के बाद, यानी कि आज के दूसरे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक गाने के बाद।
3: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: जी हाँ, आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का ये दूसरा गाना फिल्म बसंत बहार से लिया था और अब समय है नाम लेने का जिन्होंने सही सही गाने को पहचाना है। तो आज का जो सबसे पहला सही जवाब दिया है वो है कुकी। आपका आंसर करेक्ट है। करसन पिंडोरिया जी, तोची जी, दिव्या जी हैरो से, हाजरा जी, उल्लास शरफूद, नरेन पटेल, नीलेश तन्ना, मितुल पटेल, मनीषा शाह, दामिनी बहन, रानी सुहानी, ऋतु बाली, तोशी जी, श्रेया किंग्सबरी से, अमर, अयूब चौहान, विद्युत एंड सहर। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। तो अब जब जवाब सही है तो देर किस बात की, गाना बजा दे ऋतु। तो चलिए सुनवाती हूँ आज के सवाल वाला गाना आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लेकिन उससे पहले जल्दी से बता दूं कि अगर हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो साउथॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर या फिर विजिट कीजिए साउथॉल ट्रैवल।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: At Tesco Mobile, get the Samsung Galaxy S26 Ultra with 100 gigs of data for just £54.99 a month for 36 months with club card prices, saving you £342. Plus, you'll get £50 worth of club card points, worth double with reward partners, or even triple with selected eating out venues. More points, more summer. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Ends 12th of July. Club card and 36-month credit agreement required. Savings calculated on contract duration. Terms at tescomobile.com/terms.
3: ये है लाइका
4: गोल्ड।
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com.
8: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
9: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
9: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
8: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
10: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखणा रेजो हस्बंड जी।
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposables. Disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
12: Are we there yet?
13: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
12: Relax, I've booked the Uber already.
13: How? My roaming isn't even working yet.
12: I switched to Simsy before we left London.
13: Simsy? Since when are you the tech expert?
12: Since I decided I want a stress-free holiday.
14: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
15: T's and C's apply.
16: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
4: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
7: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
17: 25? Seriously?
7: Sounds like Ojo time.
17: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
7: Sorry about the wait. How can I help?
17: You can help me celebrate. I won.
18: Feel the fun. Play Ojo.
19: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gambler aware. T's and C's apply.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
20: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Southall travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
1: स्वागत है आप सभी का गोल्डन राग संग सुरों से सजी वीकेंड वाली इस पाठशाला में। मैं हूं आपके साथ अनुराग और शुरुआत करेंगे इस घंटे की भी बैक टू बैक गानों के साथ, और उसके बाद हमेशा की तरह गोल्डन वर्ड और गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस आपका करेंगे इंतजार, तो कहीं मत जाइए।
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. On Rug with Golden Rug.

0: जब छाए लाइका नेटवर्क का जादू कोई बच ना पाए। लूटमार फिल्म का एक गाना सुन रहे थे आप आशा दाई की आवाज में, लेकिन उससे पहले आप सभी के प्यारे प्यारे संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का स्वागत है सुरस सजी वीकेंड वाली इस पाठशाला में। लूटमार फिल्म का गाना सुन रहे थे भाई, इसका प्लॉट भी मैं देख रहा था कि क्या है इस फिल्म की कहानी। तो कहानी बिल्कुल लूटमार से ही जुड़ी हुई है। पायलट भगत का किरदार इसमें निभा रहे हैं देवानंद साहब, और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है कहानी। और राखी गुलजार जी ने इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस किया था, देव साहब की वाइफ का किरदार, और थोड़ी देर के लिए वो नज़र आई थी। और जिस बैंक में भगत यानी कि देव साहब अपने परिवार के साथ गए थे कुछ पैसे वैसे निकालने के लिए, लेकिन वहाँ पर आ गए डकैत और उन्होंने अंधाधुंध गोलियाँ बरसा दी। और इस गोलीबारी में राखी गुलजार जो एक गेस्ट अपीयरेंस के लिए इस फिल्म में शामिल हुई थी उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद कहानी शुरू होती है लूटमार की, जब देव साहब सब कुछ छोड़कर अपनी बीवी के हथियारों के पीछे लगते हैं। चलिए, ये था कहानी का प्लॉट, लेकिन हमारा प्लॉट ये है कि थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे आज का गोल्डन वर्ड, और आखिरी घंटे में हम आपको ले चलेंगे गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस के साथ। फिलहाल बातें कम और सुर ज़्यादा। अगला जो गाना आ रहा है रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, फिल्म का नाम हम सस्पेंस के तौर पर रखेंगे और वो होगा आपके लिए सरप्राइज। सुनते रहें गोल्डन राग।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आप सभी को मिल रहे हैं 127.30 पैसे। याद रखें अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Need anything from Tesco? Like half-price jammy Dodgers. Now, just 50p. Down from £1.
3: Club card accepted.
2: Because every little helps. Majority of larger stores, 140-gram pack, ends 3rd of June. Club card or app required.
4: Like our gold.
5: Selling your car can be super simple. If you choose We Buy Any Car, because they sort out any outstanding finance for you. Just bring along your final settlement agreement. If only they could make parallel parking simpler.
6: To the right a bit, mate. Yeah, back. Back a bit. Bit more. Oh, no, too far.
5: We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: KMB with Shanila presents London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show. Top designers from Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan and Middle Eastern communities showcasing stunning bridal collections live on the runway. Planning a wedding? Find everything under one roof. Plus, enjoy Qawwali Night by Ahmed Shah and group. Happening on Friday the 12th of June at the Willows from 1 p.m. till late. Tickets on Eventbrite. Call 07989 972879.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
11: राम कृष्ण हरी यूके तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव टिकट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org जय हरी विठ्ठल
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
12: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
14: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद
15: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमीन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट मंचूरियन मसाला पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट
14: जेमीन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
17: Fly more, pay less with Leica Fly Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All at all protected. Call 0207-132-0700 or visit likeafly.com. Like a fly. Fly more, pay less.
18: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे
19: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाजों के साथ फर्ज फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे। 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन यकीन मानिए हिंदी सिनेमा के जंपिंग जैक कहे जाने वाले जितेंद्र साहब के लिए, यानी कि जिनका असली नाम रवि कपूर भी है, उन्हें इस फिल्म ने रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। उनके करियर की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी थी इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद। हालांकि आपको बता दें कि ये फिल्म जब रिलीज़ नहीं हुई थी तो इसका जो टॉपिक था उसको लेकर बड़े कयास लगाए जाते थे। कहा जाता था कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित होने वाली है, लेकिन संगीत और एक अलग तरह की स्क्रिप्ट ने और साथ साथ उस दौर में इस फिल्म का असर ये था कि जीतू साहब ने इस फिल्म में वेस्टर्न स्टाइल के सफ़ेद जूते, पैंट शर्ट, टी शर्ट ये सब पहना है और डांस मूव भी बहुत ही अलग उस दौर में ख़ासतौर पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत के साथ दिए गए। और भारत में ये फिल्म बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की तरह एक ट्रेंड सेटर बनकर साबित हुई, उभरी। और जैसा कि मैंने कहा, 007 की तर्ज पर इस फिल्म में जीतू साहब ने अपना किरदार निभाया था और कमाल की फिल्म उनके करियर के लिए साबित हुई। यही नहीं भाई, बबीता जी को भी कहेंगे कमाल की खूबसूरत इस फिल्म में वो नजर आई, उन दोनों की केमिस्ट्री भी कमाल की। अगला गाना आशा ताई और किशोर दा की आवाज़ में, थोड़ा सा नॉटी नॉटी सा, नटखट नटखट सा, प्यारा प्यारा सा, सुनते रहें।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
3: नमस्कार, रवि शर्मा ब्रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: अमित कुमार साहब और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाजों में निश्चय फिल्म का ही गाना 1992 में फिल्म आई थी। और अगले गाने के बाद हम बताएंगे आपके लिए, आप बताएं, और हम सुनने वाली थीम का आज का गोल्डन वर्ड। अगला गाना रफी साहब की आवाज में, एंजॉय कीजिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के थ्रू 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.8 पाकिस्तानी रुपीस, 374.86 श्रीलंकन रुपीस, 443.68 बांग्लादेशी टका, 165.37 अफगान अफगानी, 83.96 एंड 1 US डॉलर 1.34.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £109.40 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
3: Oye, oye, goreha,

0: गोरे हाथे पर रफी साहब की आवाज और फिल्म का नाम प्यार किया प्यार किए जा 1966 में ये फिल्म आई थी। और इसी के साथ आपको बताने का मौका आ गया है भाई कि आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए जहां पर जलानी है आपको अपने दिमाग की बत्ती और खोलना है अपनी फरमाइश का पिटारा। जी हाँ, और वो आज का गोल्डन वर्ड है, जिसके बिना कोई भी रात मुकम्मल हो ही नहीं सकती, जिसके बिना कोई भी दिन आ ही नहीं सकता। और वो अगर अच्छा हो तो दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, और अगर बुरा हो तो फिर मुंबई के लैंग्वेज में कहा जाता है वाट लग जाती है, और वो है सपना। हम सभी देखते हैं, अच्छे बुरे सब तरह के सपने आते ही रहते हैं, और वही सपना है। लेकिन आपको सपना नहीं देखना है, आपको दिमाग की बत्ती जलानी है और सपना से रिलेटेड कोई भी गाना हम तक भिजवाना है। अगला गाना हर हफ्ता हफ्ता आपके लिए, सुनते रहें और अपनी दिमाग की बत्ती भी जलाते रहें।
1: ये है लाइका गोल्ड India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Final mukabla kal dopahar 3 baje khela jayega Ahmedabad mein Gujarat Titans aur Royal Challengers Bangalore ke beech mein, jo ki hai bada finale.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900. Or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
5: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
6: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
4: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
5: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
7: Feel the fun. Play Ojo.
8: 18 plus, gamble aware.
9: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
10: No more worries for me or you.
11: Southall Travel, at all protected.
12: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
13: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
12: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
13: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
12: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.

0: और भाई आ गए हैं सारे गाने, सपनों से रिलेटेड गाने आ गए हैं, और आप माना पड़ेगा आज दिमाग की बत्ती फुल वोल्टेज के साथ जल्दी ये लव स्टोरी फिल्म का ये गाना हम तक पहुंचाया था लता जी की आवाज में, साथ में थे अमित कुमार साहब, उनके करियर के लिए बड़ी अच्छी फिल्म में साबित हुई थी। एनीवेज आगे बढ़ेंगे, और ये गाना हम तक पहुंचाया था किसने भिजवाया था लव स्टोरी, अमित पटेल साहब, सौरभ जी और काशी जी ने, बड़ा अच्छा नाम है काशी जी आपका। और दूसरा पहला जो गाना हमने, माफ कीजिएगा, इस घंटे में पहला सुनाया, खूबसूरत फिल्म का, कविता कृष्णमूर्ति और सानुदा की आवाज़ में मेरा एक सपना है, ये गाना हम तक आया था मितुल पटेल जी और निर्मला जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे गाने को हमारी प्लेलिस्ट में शुमार कराने के लिए। तैयार रहिए, अगला गाना भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, आज की थीम को ध्यान में रखते हुए सुनते रहे गोल्डन राग संग, सूरज सजी वीकेंड वाली पाठशाला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 127.30, याद रखें, अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Leica Gold.
2: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car instead of selling privately. We Buy Any Car can get it sorted in under an hour, so no weekends watching randoms inspect your car to not even buy it. If only they could make finding where you park simpler.
3: Was it floor 2 or 3? I swear I parked here. Where is it?
2: We Buy Any Car. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at webuyanycar.com.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
7: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
9: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
10: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
11: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
10: ये तो बताओ, कोई पता चला?
12: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
10: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
12: शीघ्र शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208514540। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
13: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड। Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
13: high appreciation
14: in Dubai.
15: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मां भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मां दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मां जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
17: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
18: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
20: जिस

0: Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Lata ji aur Mahendra Kapoor sahab ki awaaz mein geet film ka ye gaana पंकज वर्मा, सालिम अख्तर और कंचन जी की तरफ से हम तक पहुंचाया गया था। बहुत ही प्यारा गाना, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। और इसी के साथ किशोर कुमार साहब के फैंस के लिए भी बड़ी खबर है। स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन, इंद्रानी, संजय एंड द 515 बैंड। और ये इवेंट हो रहा है फ्राइडे 19 जून प्रिंस रीजेंट होटल चिंगबेल एक्सेस में। टिकट अवेलेबल है eventbrite.co.uk और कॉल कर सकते हैं 0208514500 पर। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड रेडियो।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: किशोरदा की आवाज में आराधना फिल्म का ये गाना काका के लिए भी ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई थी और ये गाना हम तक पहुंचाया था बहुत सारे लोगों ने, अर्जुन साहब, संतोष जी, नीलम जी, हाँ, सुमति जी, हंसा वोरा, मिसेस इकबाल बेगम, निर्मला जी और सुमित चौरसिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। अगला गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में वही गाना है जिसे आपने हम तक पहुंचाया है।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागास एंड डिटेल्स एट laikaradio.com।
3: लिसन wherever यू आर बाय डाउनलोडिंग द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप नाउ ऑन राग विद गोल्डन राग।

0: रंग है।
1: रफी साहब की आवाज में गाइड फिल्म का ऑल टाइम क्लासिक गाना, और ये गाना हम तक पहुंचाया था सरफून जी, उल्ला जी और सुदेश टेकर साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए।
2: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
1: तो इस बार अपने समर को और भी ज्यादा यादगार बनाएं साउथ हॉल ट्रेवल के साथ। एक्सप्लोर करें बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर, हॉलीडे डील्स, और साथ में होगा फ्लाइट्स, होटल एंड ऑल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड 40 साल से ज्यादा का अनुभव और उससे भी बड़ा ट्रस्ट का सौदा। ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड से सम्मानित, और विजिट कर सकते हैं आप। ज्यादा जानकारी के लिए साउथ हॉल ट्रेवल को कॉल कीजिए 0208574 8410 पर।
2: Holiday breaks were brought to you by

सम कहां, तुम कहां, हम कहां, ताल कहां, सम कहां, तुम कहां, हम कहां, तेरे कर तुम, नाल कर तुम, तेरे कर तुम, नाल कर तुम, हम, तुम, ना ता, ना ता।

लता जी की आवाज में ज्वेल थी। फिल्म का बेहद ही शानदार प्यारा सा गाना हम तक पहुंचाया है करसन पिंडोरिया जी, रंजना कुकाड़िया, दिनेश पोपट जी ने। और अगला गाना आ रहा है इरफान फ्रॉम ग्रीनफोर्ड। याद रखें, और अगला घंटा एक बार फिर से दिमाग की बत्ती जलाने के लिए 3 गोल्डन राग के ऑप्शंस कर रहे हैं आपके इंतजार।

0: बच के नहीं भैया, डट के रहना है। पुकार फिल्म का एक गाना सुन रहे थे, आशा था ये किशोर दा की आवाज में, साथ साथ में आर डी बर्मन साहब ने भी अपना टैलेंट इस गाने में झोंका है पूरी तरह से। और आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस आपके लिए हम पेश करें, इससे पहले बता दें कायदे प्लस कानून तीन ऑप्शंस हम आपको देंगे, ए बी एंड सी, जो कि गानों के होंगे और उसे आपको वोट की तरह कास्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ए पसंद आता है तो ए, बी पसंद आता है तो बी, और सी पसंद आता है तो ऑब्वियसली सी, उसे आप हमें वोट की तरह कास्ट करें हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर। और जिस गाने को सबसे ज़्यादा वोट्स रिसीव होंगे वो गाना हमेशा की तरह आज का बनेगा गोल्डन राग। तो पेश है आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए है, किस किस को प्यार करूं, रफी साहब की आवाज़ में, तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का ये गाना है। और ऑप्शन बी है, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक हुई बे करी, फिल्म का नाम है गंगा जमुना। और ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है, चल मेरे दिल लहरा के चल, फिल्म का नाम है इशारा, मुकेश साहब की आवाज़ में है। सैटरडे के को ध्यान में रखते हुए हमने तीनों गाने फास्ट पेसी रखे हैं, इसलिए आपको चुनने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन ए है, किस किस को प्यार करूँ फ्रॉम द फिल्म तुमसे अच्छा कौन है, ऑप्शन बी, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा मकसक हुई बेकरी, गंगा जमुना फिल्म का ये गाना है। और ऑप्शन सी है, चल मेरे दिल लहरा के चल, फिल्म का नाम है इशारा। समझदार के लिए क्या है काफी इशारा। तो अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें, वोटिंग लाइंस ओपन हो चुकी हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.30। याद रखें अपने पैसे को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फिलहाल अगला गाना हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
4: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02023736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स your travel mantra.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
9: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
11: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
12: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
15: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
16: Location, location, location.
17: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
18: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
17: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
18: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
17: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
18: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
17: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
18: High appreciation.
17: In Dubai.
19: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
20: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
21: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
22: Artist of the week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक अनुराधा पौडवाल जी के साथ मनहर उदास जी भी थे और सड़क फिल्म का ये प्यारा सा गाना हमने आपको सुना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज आपके लिए आज की गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए है किस किस को प्यार करूँ फ्रॉम द फिल्म तुमसे अच्छा कौन है, ऑप्शन बी है नैन लड़ जाई हैं तो मनवा मकस खोई बेकरी गंगा जमुना फिल्म का ये गाना है, और ऑप्शन सी है चल मेरे दिल लहरा के चल, फिल्म का नाम है इशारा। और इशारा ये है कि भाई अभी तक वोटिंग लाइन्स हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें। अगला गाना किशोर दा अशदाई की आवाज में, फिल्म का नाम अधिकार।
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley, soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: आशा दाई और रफी साहब की आवाज में विंटेज गोल्ड वाला मैंने आपको गाना सुनाया, तुमसा नहीं देखा फिल्म से 1957 में फिल्म आई थी। और इसी के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि भैया आज के लिए वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं पूरी तरह से बंद और चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। देखते हैं आप लोगों ने एक दूसरे को क्या सरप्राइज दिया है, थोड़ी देर में आपके साथ।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.84 पाकिस्तानी रुपीस, 374.67 श्रीलंकन रुपीस, 443.67 बांग्लादेशी टका, 165.26 अफगान अफगानी, 85.16 एंड 1 US डॉलर 1.34.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £109.40 per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
5: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM. Ye hai
6: Laika Gold.
3: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: तो भाई जिसका था सबको इंतजार वो है दिन कल tomorrow 3 बजे यानी कि अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच। ये मैच मिस मत करें।
3: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
1: तो बस कुछ लम्हे दूर आपके लिए आज का गोल्डन राग। क्या कहता है दिल, कौन सा गाना होना चाहिए आज का गोल्डन राग? चलिए हटाते हैं सस्पेंस से पर्दा।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: चल मेरे दिल। भाई कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, और ये इशारा आप लोगों ने हमको दिया है आज इस गाने को आज का गोल्डन राग बनाने के लिए। कल्याण जी आनंद जी का खूबसूरत संगीत, इशारा फिल्म का ये गाना और मजरू सुल्तानपुरी के कलम से निकला ये खूबसूरत गीत। किसने किसने दिए इस गाने को सबसे ज्यादा वोट? से मितुल पटेल जी, उल्लास जी, अमित पटेल, किशोर लाडवा, हना, निर्मल किरीट, असद जी, दिनेश पोपट, निर्मला जी, अमिता, सुदेश टेकर, भारती जी, दिव्या फ्रॉम हेरो, हरप्रीत जी, गुड आफ्टरनून, अयुब चौहान साहब, मीरा जी, सुमित चौरसिया, पंकज एंड अफजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और इस सुपर संडे वाली महफिल से पहले वाली जो महफिल है वीकेंड वाली पाठशाला, इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट आ रही सरिता जी, अब होगी कल आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा जुड़े रहें लाइका के साथ।
1: ये है लाइका गोल्ड।

0: मुझे नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक माइक्रोफिल कंटेनर्स।
2: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira Twin Center Escape. Fly from the UK, enjoy three night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम of Kajal's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
4: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
5: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
4: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
9: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
10: No more worries for me.
11: Southall Travel, at all protected.
12: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
13: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
16: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
17: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
16: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
17: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
16: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
17: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
16: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
17: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
18: યુ, યે યુ, લિસનિંગ ટુ ધ રેડિયો, અપ ટુ વોટએવર. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up, and
19: it could be you.
18: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
20: Next, Sarita Sabharwal
0: with golden memories. This is Like a Gold.
20: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे. जो हाँ.

0: हम तो आपकी दीवानी हैं और इस तरह से चुप हो जाएंगे आप कहते कहते। हाँ ऐसे ही करते हैं सभी। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुके हैं। पहला गीत था फिल्म बारूद से, 1998 की फिल्म थी, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें आपने सुनी। और इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बता दूं, बारूद 1998 में आई थी। एंड इस फिल्म में किस किस ने काम किया था, इट वाज अ राखी के साथ अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन। फिल्म को बनाया था प्रमोद चक्रवर्ती ने एंड इस फिल्म का संगीत था आनंद मिलन का। स्वीट सॉन्ग था, बहुत ज़्यादा नहीं प्ले होता है लेकिन बहुत प्यारा गीत था और आपको पसंद आया ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मेरी स्क्रीन पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। और दूसरा गीत मैंने चुना था आपके दीवाने फिल्म से, जो 1980 की फिल्म थी, किशोरदा मोहम्मद रफ़ी एंड अमित कुमार की आवाज़ें थी। उम्मीद करती हूँ ये गीत भी आपने पसंद किया। अब क्या है गीतों में, क्या चल रहा है सरिता, आप बताइए ना मुझे कि ऐसे ही चलने दें या फिर खिचड़ी बना दें या क्या चाहिए आपको। खिचड़ी भी कभी कभी खाने में स्वाद लगती है। आपको मज़ा आता है खिचड़ी खाने में? अगर हाँ और तो इजी काम है, और इतनी गर्मी में कौन कुकिंग करना चाहता है, तो आज खिचड़ी ही बनाएं और आपको परोस देते हैं। कैसे मिजाज हैं आपके, ये तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। ठीक तो है ना, जहाँ भी रहें खुश रहें, खैरियत से रहें, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करते रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, कम ऑन चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जियो शान से, मुस्कुराते गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए। ये गीत तो चुन चुन कर लाई है सरिता। अब जल्दी से मुझे बता दें कि खिचड़ी खानी है या फिर किसी एक टॉपिक, जो दो वर्ड हर गीत में सुने, दोनों गीतों में सुनने को मिले आपको, उन्हीं शब्दों पर आधारित सारे गीत सुनना चाहते हैं, तो आपको भी कोई गीत ऐसा याद है तो मुझे ज़रूर बताइए। चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ज़रा ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 25 paisas today. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and you will be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. Like
2: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु,
5: गुरु।
6: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
7: तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र।
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
9: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
11: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: KMB with Shanila presents London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show. Top designers from Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan and Middle Eastern communities showcasing stunning bridal collections live on the runway. Planning a wedding? Find everything under one roof. Plus, enjoy Qawwali Night by Ahmed Shah and group. Happening on Friday the 12th of June at the Willows from 1 p.m. till late. Tickets on Eventbrite. Call 07989 972 879.
2: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
3: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
2: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: दिस ईद उल अज़हा आई स्टे क्लोज टू व्हाट मैटर्स विद रेमिटली, लाइक सेंडिंग अ लिटिल समथिंग टू Towards Ami's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
6: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and LikeAGold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुगिरिल्ला अल्लाहु अकबर अल्लाहु
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुगिरिल्ला अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हर हर
1: अल्लाह अल्लाह
0: हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह

0: किशोर कुमार जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत आरडी बर्मन साहब ने कंपोज किया था। क्या आप जानते हैं ये किस फिल्म का गाना था? ज़रा हाथ खड़े कर दें। मैंने अभी बता दी कि किस फिल्म का गीत था, लेकिन दिस सॉन्ग वॉज पिक्चराइज्ड ऑन जितेंद्र। बताइए, आर डी बर्मन साहब ने इसे संगीतबद्ध किया था और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था इस गीत को, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन ने। किस फिल्म की बात कर रही हूँ ये भी बता देती हूँ कि जितेंद्र के साथ ही आशा पारिक। जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बताइए कि किस फिल्म का गीत था। देर नहीं करनी है क्योंकि मुझे इंतज़ार है, मुझे बताना है आप सभी को कि ये किस फिल्म का गीत था। मुझे नहीं याद है कि मैंने ये गीत फिल्म में देखा था या नहीं, पर ऐसा सुनने में ही आया है कि ये पिक्चराइज हुआ था जितेंद्र पर। किस फिल्म की बात कर रही हूँ? व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, जाना पहचाना है आपका व्हाट्सएप नंबर। अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ मैं।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: और ये भी बताइए कि लास्ट आपने ये गाना कब सुना था और कहाँ सुना था, ये भी जानना चाहती है सरिता। चलिए अब आगे बढ़ लें।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: So ye gana agar Dairy Valley ne aap tak pahunchaya to agla geet Coca Noodles wale pahuncha rahe hain aap tak. Aur ye bhi bata dun ki wo geet bhi picturized hua kis par? Jitendra par. फिल्म का नाम है फर्स्ट।
1: लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: लता मंगेशकर एंड मुकेश जी की आवाज है। फ्रॉम द फिल्म फर्स्ट, 1967 में आई थी ये फिल्म।

0: नहीं नहीं हम सभी मानते हैं कि आप एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, जैसे कि हम और आप एक दूसरे को कितना चाहते हैं। वेल, प्रकाश सूत्र जी, आपने लिखा है कि सरिता जी आशा पारिक थी या बबीता थी। इस फिल्म में बबीता थी, लेकिन जिस फिल्म का मैं पूछ रही थी वो थी आशा पारिक।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
0: मेरे बहुत से साथियों ने सही जवाब दिया है। यस, मैं ज़्यादा देर नहीं आपको इंतज़ार कराऊंगी क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। कारवां था फिल्म का नाम, जिसका गीत आपने सुना था और वो जितेंद्र जी पर पिक्चराइज हुआ था, एंड उस फिल्म की हीरोइन थी आशा पारिक। जिन्होंने सही जवाब दिए उन्हें क्लैप्स मिल गए हैं। थैंक यू सो मच कि बड़े प्यार से आप मैसेजेस भेजते हैं। राइट, वी साउथ हॉल ट्रैवल वाले ये कहते हैं आपसे कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रैवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल एंड एट ऑल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years एंड विनर्स ऑफ ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड। विजिट साउथ हॉल ट्रैवल और कॉल देम ऑन 0208-574-8410।
2: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Save up to 50% in the Dunelm sale.
4: Go on, get some savings in your life with brilliant offers on thousands of products, from bedding and bathroom to curtains, furniture and so much more. And breathe. Save up to 50% in-store, online and on the Dunelm app. Dunelm, the home of homes. T's and C's apply.
5: This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश।

0: समाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत।
1: जरूर जरूर, किसने मना किया है मोहब्बत करने से। मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत प्यारा एहसास है। और आपने ज़हीर खान साहब लिखा है कराची से कि गाने तो आपके बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो नपी तुली आप गुफ्तगू भी करती हैं वो भी हमारे दिल को भाती है। थैंक यू एवर सो मच।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 127.83, Pakistani rupees 374.67, Sri Lankan rupee 443.68 and Bangladeshi taka 165.26, Afghani is 85.33 and US dollars 1.34.
3: Like a radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
3: LIKA Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold ka rate is work market mein chal raha 108 pounds and 63 pence per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Sarita Sabharwal.
3: Ye hai Laika Gold. 10:35 AM.
2: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: राइट भी, आज तो कोई मैच नहीं है, लेकिन कल क्या होने वाला है? कल फाइनल मैच होने वाला है, तो तैयार रहिएगा गुजरात टाइटंस एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को देखने के लिए।
2: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
4: Yeah, like a goal.

0: देश में निकला होगा चांद। जगजीत जी अंजित्रा जी की आवाज़ों में हमने ये कलाम सुना। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया और बाकी की बातें नेक्स्ट आवर में होंगी। आज के प्रोग्राम का अगला गीत हमें ले जाएगा न्यूज़ तक। न्यूज़ से पहले हम पहले कुछ मैसेजेस सुनेंगे, फिर गाना और फिर समाचार। समाचारों के उस पार मैं सरिता आपका इंतज़ार करूँगी, इसलिए कहीं नहीं जाने का, यहीं रहिएगा मेरे साथ।
1: राम कृष्ण हरी UK तैयार आहात ना? ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। किट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
7: फोन 02085748410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th to 21st June वुडलेन स्टैनमोर के टेम्पल ग्राउंड्स पर। फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए। रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें। वेन्यू टेम्पल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF। फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com। कॉल 07932 623852।
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
11: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
12: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedianath. With over 100 years of Ayurvedic legacy, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
13: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
14: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: गाने आपने सुने। पहला गीत था हम दिल दे चुके सनम फिल्म से, जो 1999 में आई, और दूसरी फिल्म थी माचिस। माचिस के गीत में बहुत सारी आवाज़ें थी, हरिहरन जी, सुदेश वाडकर, विनोद सहगल एंड के की आवाज़ें आपने सुनी। कृष्ण कुमार कुनाथ, आज ही के दिन 31 मई को ये दुनिया छोड़कर चले गए। 30 मई है आज, लेकिन मुझे क्यों लगा कि आज 31 मई है, तो चलिए कोई बात नहीं, आज मैंने उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में दो गीत उनके सभी फैंस के नाम किए। के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, पॉपुलर नोन एज के पर पूरा नाम उनका था कृष्ण कुमार कुननाथ, और ही वॉज एन इंडियन प्लेबैक सिंगर। के इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वेरी वेरी वेरी गुड सिंगर, प्लेबैक सिंगर इन इंडिया, नोटेड फॉर हिज वर्सटैलिटी एंड वेराइटी ऑफ म्यूजिक जॉनरे। ही रिकॉर्डेड सॉन्ग्स पहले हिंदी में, तेलुगू में, तमिल में, कन्नड़ लैंग्वेज में, एंड के वॉज अ रिसिपियंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स accolades and including two screen awards along with the 6 Filmfare Awards nominations. KK began his career by singing advertising jingles and made his film debut in 1996 with the song In Machis. Machis ka geet maine program mein shamil kiya. KK released his debut album in 1999 jo bahut hi kamyab hui, Pal tha uska naam, usme the title track Pal and यारो दोनों बहुत फेमस हुए थे एंड आर यूज्ड इन स्कूल ग्रेजुएशंस एज वेल, एंड द एल्बम टर्न आउट टू बी हिज करियर्स ब्रेक थ्रू, एंड के रिसीव्ड द स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर फॉर दैट एल्बम एज वेल, नॉन फिल्म म्यूजिक के लिए। एंड द सॉन्ग तड़प तड़प के इस दिल ने, ये गाना कितना मशहूर हुआ आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, इट्स फ्रॉम द फिल्म हम दिल दे चुके सनम दैट अर्नड हिम हिज फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नॉमिनेशन, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल फॉर खुदा जाने फ्रॉम फिल्म बचना है हसीनो, इन्हें बाद में मिला था। इन्होंने 2000 में भी बहुत अच्छे अच्छे 2000 जब तक ये अलाइव थे तब तक इन्होंने बहुत से गीत गाए और बड़े कामयाब रहे, जिनमें से कुछ एक के नाम मैं लेना चाहूँगी, कोई कहे कहता रहे, दिल चाहता है का गीत, ओ हमदम सुनियो रे, साथिया का गीत, डोला रे डोला, देवदास का गीत, देन दस बहाने करके ले गई दिल, दस का गीत, क्या मुझे प्यार है, वो लम्हे का गीत, तू ही मेरी शब, ऐसे द लिस्ट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग। एंड के वॉज पॉपुलरली नोन एज मेसमराइजिंग रोमांटिक सिंगर, रोमांटिक सॉन्ग्स उनके बहुत खूबसूरत थे। ऑन 31st of May 2022, वेल कल इनको गए 4 साल हो जाएंगे, के परफॉर्म्ड अ कॉन्सर्ट एट अ कॉलेज फेस्टिवल एट नजरुल मानशा इन साउथ Kolkata. After the concert, he returned to his hotel in Esplanade, and he complained ki he's feeling unwell, aur uske baad unhe hotel lekar jaaya gaya, where he experienced cardiac arrest and he collapsed, and then unhe hospital pahunchaya gaya, but he was declared dead. So he was only 53 years old, aur jitne महान हस्तियां होती हैं वो इतनी यंग एज में चले जाते हैं, लाइक मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत जल्दी चले गए थे, के बहुत जल्दी चले गए, और अगर एक्टर्स की बात करें तो आई ऑलवेज़ फील सुशांत सिंह कि बहुत जल्दी चले गए। एनीवे, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इनके गीत इसी तरह से बहुत शोहरत पाते रहें, सभी इन गीतों को गुनगुनाते रहें और इन्हें हमेशा याद करते रहें। के वॉज गिवन अ गन सैल्यूट बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एट रविंद्र सदन इन कोलकाता। सो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति। चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, दो गीत आपने सुने और मैं नहीं शामिल कर पाऊँगी क्योंकि वो 2000 के अब हैं, तो मैं मुझे रिक्वेस्ट आ रही हैं, लेकिन आई एम सो सॉरी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, भी SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं, your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees 25 paisas, and send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when you sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Sarita Sabharwal with your weekend.

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ब्यूटीफुल गाना था, बड़े अरसे के बाद मैंने भी सुना और अपने सभी सुनने वालों को भी सुनवाया। उम्मीद करती हूँ मेरी चॉइस आपने पसंद की है। अब कितनी फीलिंग्स के साथ गाया इस गीत को किशोर दा ने, बहुत प्यारा गीत था। फ्रॉम द फिल्म गैम्बलर, 1971 की फिल्म थी एंड आई थिंक इट वॉज पिक्चराइज्ड ऑन देवानंद, राइट। और अब अपने सभी सुनने वालों को मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, और क्या बताना चाह रही हूँ, किशोर दा के अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हैं तो गेट रेडी, एंड किशोर दा के अगर आप क्रेज़ी हैं तो ये प्रोग्राम आप देखने ज़रूर जाइएगा। स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन, इंद्रानी, संजय एंड द 515 बैंड। इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th जून एट द प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल में, जो कि एसेक्स में है। एंड टिकट्स अवेलेबल एट eventbrite.co.uk और कॉल 0208-514-5400। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका गोल्ड रेडियो।
1: ये है
0: लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
2: बहुत प्यारा गीत है ये भी। अगर आपकी एनिवर्सरी आज, अपनी बेगम को कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्यारी सी बीवी को कुछ कहना चाहते हैं, उनकी तारीफ करना चाहते हैं, तो चलिए शुरू हो जाइए इस गीत के साथ साथ, गाइए, झूमिए और उनको इम्प्रेस कर दीजिए।

0: बलराज सहनी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। फिल्म का नाम था वक्त। यस ठीक है, मैंने भुलक्कड़ तो है सरिता वैसे, यस वक्त से था ये गाना। और आपने मुझे मैसेज भेजा है मिस्टर नरेंद्र पाठक जी, और लिखते हैं, हाय सरिता, गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर फैमिली इन ऑल योर लिसनर्स, रिगार्ड्स टू एवरी वन फ्रॉम मिस्टर पाठक, वेलिन गार्डन सिटी से आपने मैसेज लिखकर भेजा है। एंड प्लीज़ कैन यू विश मिस्टर सतीश कुमार पाठक अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फ्रॉम लाइका गोल्ड एंड पाठक फैमिली, वेलिन गार्डन सिटी हार्ट्स, हार्टफोर्डशायर से आपने ये लिखा है। आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल नाउ, थैंक यू सो मच कि आपने हमें चुना है और हमें मीडियम बनाया कि उन्हें हम विश कर सकें। सतीश जी, आपको हमारी तरफ से जन्मदिवस की ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, हज़ार बार आए। और वक्त का ये गीत हमने आपके नाम किया, एंड जो भी आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं उनके नाम भी किया। और ये गीत आप तक पहुंचाया किसने?
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: दिस इज सरिता सांबरवाल ऑन लाइक अ गोल्ड।
3: लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: राइट, आपको बता दें कि हमारे लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट पर आप हर हफ्ते, हर रोज़ ही कुछ ना कुछ देख सकते हैं वैसे, पर अब जो एपिसोड 18 है दैट इज़ आउट एंड इट्स होस्टेड बाय रूबी रजा एंड इट्स ऑल अबाउट मेनोपॉज एंड आर हॉट फ्लश इज स्टिल अ हश हश इन आवर कम्युनिटी एज साउथ एशियंस डू वी डाउन प्ले द चेंजेस इन विमेन। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन होगी, तो आप ज़रूर ये देखिएगा एपिसोड। एंड अगर लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
4: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
5: ये है लाइका गोल्ड।
6: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
7: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट ट्रेवल
9: hubworld.com. Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car. Now in their 20th year, they're on average 11 minutes away, so help is never far. If only they could make finding a good driving song simpler. No. Oh, definitely not. We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
10: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
11: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
10: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
11: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
10: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
12: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th to 21st June वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर। फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए। रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें। वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF। फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com। कॉल 07932 6 2 3 8 5 2
8: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
13: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
8: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
13: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
8: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
13: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
8: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
13: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
14: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
15: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
14: High appreciation.
15: In Dubai.
16: Chai break ho ya busy work day. Sabko chahiye ek perfect cup of chai.
17: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
16: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
17: Rich, authentic taste every single time.
16: Royal Chai, brewed for business.
17: Email now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
18: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद.
19: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट.
18: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
20: दिस ईद उल अज़हा आई स्टे क्लोज टू व्हाट मैटर्स विद रेमिकली, लाइक सेंडिंग अ लिटिल समथिंग टुवर्ड्स अम्मीज फेमस बिरयानी विद There's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Ruby Raza hosts a special on menopause featuring special guests.
21: So I've been navigating menopause on and off since January 2024 and it's happened suddenly. So I haven't had the kind of build up, it's suddenly. So it's been a journey and now I'm navigating menopause without any HRT or anything, any medications.
3: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
22: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swami Narayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: गीत आपने सुना फ्रॉम द फिल्म कंगन, बहुत प्यारा गीत था। 1972 में आई थी ये फिल्म। यस, आपने देखी ये फिल्म? नहीं देखी है तो फिल्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ। यस, ज़रूर दे सकती हूँ। मैं बता दूँ कि ये 1971-72 में आई थी। माला सिन्हा और संजीव कुमार ने इस फिल्म में काम किया था एंड कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। ये गीत आपने सुना महेंद्र कपूर एंड लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में। और बाकी के गाने भी अच्छे थे इस फिल्म के, पर ये गाना काफ़ी मशहूर हो गया था। चलिए अब आगे बढ़ जाएं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 127.84, Pakistani rupee 374.67, Sri Lankan rupee 443.68, Bangladeshi taka 165.26, Afghanis 85.47 and US dollars 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. LIKA Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: गोल्ड का रेट इस वक्त है 108 pounds and 63 pence का एक ग्राम सोना।
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: ब्यूटीफुल गाना, बहुत प्यारा गीत था और आवाज़ें बहुत अच्छी थी। आशा भोसले एंड मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था इस गीत को। एंड पहला गीत था आती है तो चल, बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में आवाज़ मिलाई थी अलका याग्निक ने सात रंग के सपने फिल्म से, मैंने इस गीत को चुना था। और फिल्म इंसान का गीत सुनते ही मिसेस शेख ने याद किया, थैंक यू सो मच, यार कह रही हैं कि मेरा मनपसंद गीत है, मेरे नाम कर दें। ठीक है, आपके नाम सारा प्रोग्राम ही हम आप सभी के लिए पेश करते हैं, तो सब जो गीत आपको पसंद आ जाए समझिए कि आपके नाम है। मनु जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। भारती सुन रही हैं, उमेश शाह जी आपका नाम ले चुकी हूँ मैं पहले जिनके ले लिए नाम, प्रकाश सूत्र जी आपका भी नाम लिया था, यस, उल्लास इन टोरंटो, जहीर खान साहब इन कराची, महेंद्र पटेल जी इन क्रॉयडन, मिस्टर नरेंद्र पाठक आप सुन रहे हैं वेलिंग सिटी से, हंसा वोरा थैंक यू, श्वेता, मोहम्मद अयूब चौहान एंड भारती डीडी, केशव, राकेश अहूजा स्पेन में प्रोग्राम सुन रहे हैं, और निर्मल एंड कीरत जी, विनी विनोद एंड वरुण सहर आप सभी का धन्यवाद, तोची जी, दिव्या इन हैरो एंड आप कौन हैं, आपका नाम कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कौन है जी आप, वजावत, ओके, जो अलेक्सा पे हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, एंड आप है दिनेश पोपट जी आपका भी धन्यवाद, हना, मीरा जी, जहाँ नंबर लिखे होते हैं ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप हैं गंगा जमुना का गीत सुनना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनना चाहते हैं, जीना लवारिस का गाना सुनना चाहते हैं, राइट, थैंक यू सो मच आपका भी। एनीवे जिनके नाम नहीं ले पाए उनसे माफ़ी चाहती हूँ, सुदेश टक्यार, जितेंद्र धंगा आप भी सुन रहे हैं, मीरा जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये है लास्ट आवर ऑफ द शो और इसमें भी मिले जुले गीत, अभी आर्टिस्ट ऑफ द वीक में अनुराधा पौडवाल का बहुत प्यारा सा गीत, उससे पहले कुछ और भी काम है ये।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Write your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 25 paisas. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you spend over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: राइट भी, आज परेश रावल जी का बर्थडे है, उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि उन पर कोई ऐसा गीत हो जो मैं प्रोग्राम में शामिल कर पाऊँ। एक गीत था क्यों आगे पीछे डोलते हो, वो वाला गीत, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, पर आई एम श्योर कि दैट इज़ आफ्टर 1999, तो प्ले नहीं कर पाऊँगी। वैसे परेश रावल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, ही वॉज़ बॉर्न ऑन 1955 में 30th मई, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ। ही इज़ अपियर्ड इन ओवर 240 फिल्म्स एंड द रिसिपियंट ऑफ वेरियस अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड एंड 3 फिल्म फेयर अवार्ड। He was honored with Padma Shri from the Government of India in 2014. Our National Film Award for the Best Supporting Actor, his performance in Wo Chokri and Sir. सर में इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और सर में भी पता नहीं कोई गाना इनके ऊपर था या नहीं, मैंने ये फिल्म देखी नहीं है एक्चुअली, सो आई कांट से कि कौन सा गीत इन पर पिक्चराइज हुआ होगा। अगर आपको कोई याद हो तो मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल कर दूँगी, एंड हमारी तरफ से इन्हें बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। एंड कृष्णा अभिषेक, हु इज़ गोविंदाज़ नेफ्यू एज़ वेल, ही सेलिब्रेटिंग हिज़ बर्थडे टुडे एंड ही वॉज़ बॉर्न 1974 में उनका बर्थ हुआ था. एनीवे तो उन्हें भी बहुत बहुत बधाई हो. मंसूर खान जो कि डायरेक्टर है उनका भी आज स्पेशल डे है, तो उन्हें भी बहुत बहुत मुबारक. चलिए अब आगे बढ़ लें और जल्दी से ये भी सुन लें.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a Gold. Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car, because they sort out any outstanding finance for you. Just bring along your final settlement agreement. If only they could make parallel parking simpler. To the right a bit, mate. Yeah, back a bit. Bit more. Oh, no, too far. We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
2: Watford mein dinner plans, thoda classy, thoda desi.
3: Then come to Godfather and Company, Vivek House, Bar and Kitchen.
2: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala to biryani, fresh breads and refreshing drinks.
3: Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
2: Friends, family ya special night out, make it memorable.
3: Godfather and Company, taste the legacy, live the moment.
2: Visit Vivek House, Watford. Call 073-00-99-8823.
3: Book your table today.
4: राम कृष्ण हरी. UK तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला? येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ. 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या. महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल. थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव. टिकेट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org. जय हरी विठ्ठल.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
7: Step into the new grand showroom of Gargels Couture, Southall.
8: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
7: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
8: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gargels Couture, now open 7 days a week.
7: Gargels Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Ab London baithe milega Asian ethnic swad instantly thanks to Jamin Foods.
12: Just add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipes like sabudana khichdi, sheera, poha, bhaji, veg biryani, dal bhat are ready to serve on your plate.
11: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with Jamin Foods.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
15: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All at all protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
16: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: अनुराधा पौडवाल की आवाज़, सड़क से चुना था मैंने इस गीत को, नदीम श्रवण का संगीत। आई होप यू एंजॉय द सॉन्ग।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: भाई किसी की तारीफ हो तो ऐसी हो ना, क्या जन्नत में ले जाते हैं। बहुत खूबसूरत गीत था, फिल्म का नाम था मोहब्बत जिंदगी है। महेंद्र कपूर साहब एंड आशा जी की आवाज़ें आपने सुनी हेयर ऑन लाइक अ गोल्ड। एंड अभी अभी बेबसी, आप बेबसी राय, इन्होंने मुंबई से मैसेज भेजा है, लिखते हैं कि मैं मुंबई में आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। जगतार जी आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। हरप्रीत थैंक यू, आपके भी बराबर मैसेजेस मिले। महेंद्र पटेल जी आप भी इंजॉय कर रहे हैं। वैसे सभी ने मुझे बार बार मैसेजेस लिखकर यही बताया कि प्रोग्राम पसंद आ रहा है।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: इस गीत से पहले मैं जल्दी से आपको बता दूं कि शराफत फिल्म का गीत है ये, और ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी। फिर सरिता गलती करिए, 31 जुलाई को हुई थी 1970 में। और कुछ जगह ये पता चलता है जब आप गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, तो कहीं ये पता चलता है कि ये फिल्म 31 मई को हुई थी इन 1970। अगर आपने देखी थी फिल्म तो आपको पता होगा कि कब देखी थी ये फिल्म, किस दिन।

0: ये गीत मैंने चुना था कयामत से कयामत फिल्म से, और इसकी एक ये वजह है कि इसके डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर हुसैन खान, मंसूर खान के नाम से जाने जाते हैं, इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, बॉर्न ऑन 30th of May 1958, एंड इज़ द सन ऑफ नासिर हुसैन खान। एंड इन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई हैं, लेकिन कयामत से कयामत एंड जो जीता वही सिकंदर, अकेले हम अकेले तुम, जोश, एंड देन जाने तू या जाने ना, एंड एक दिन, ये सब फिल्में इन्होंने बनाई हैं। और ही रिसीव्ड वेरी गुड रिस्पांस ऑफ दिस कयामत से कयामत तक, जिनकी जो डेब्यू फिल्म थी, एंड फॉर विच ही रिसीव्ड द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म providing wholesome entertainment and Filmfare award for best director of the year. Mansoor Khan saab ko hamari taraf se birthday ki dheero mubarak.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca bowl today. This is Like a Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Like a Group. Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, currency rate bata dete hain. Indian rupees 127.85, itne paise milenge against 1 pound, and Pakistani rupees 374.63, and Sri Lankan rupees 443.69, Bangladeshi taka 165.22, Afghani 85.66.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's £108.63 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold.
1: This is Like a Gold. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: भई इतनी देर तक बड़े प्यार से IPL देखते रहे सभी, और कल फाइनल होने वाला है, एंड फाइनल है किसका? गुजरात टाइटन्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दे विल बी फाइटिंग ईच अदर, कह सकते हैं दोनों के बीच में मैच होने वाले, देखते हैं कि कौन जीतने वाला है ट्रॉफी।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
4: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
0: जी हाँ, और मैं हूँ सरिता सबरवाल, आपकी सेवा में एवरी सैटरडे एंड संडे 4 till 7 आपका मनोरंजन करती हूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे गीत लेकर आती हूँ, कुछ इधर उधर की बातें भी होती हैं। और पिछले नियरली 3 weeks तक मैं बाली जी का प्रोग्राम पेश कर रही थी, लेकिन मंडे हमारी मुलाकात नहीं होगी, मंडे होपफुली बाली जी विल बी बैक ऑन द हॉट सीट, और हम चाहते हैं कि वो अपना प्रोग्राम संभालें। बहुत प्यार से वो सभी के जितने भी पुराने भी एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड जो भी हस्तियां हैं उनके बारे में बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, तो ज़रूर सुनिएगा। मेरे बाद आ रहे हैं सुप्रतिम, जो सैंडी शाह के बदले आज विंटेज गोल्ड प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश करेंगे। उनका साथ दीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कल आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊँगी 4 बजे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते गुनगुनाते चहकते और महकते रहिए। Bye for now.
1: Bye.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
6: फोन 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment line avi rahya che sakhna rejo husband ji Leena Shah ane Samir Shah sathe hasya ni full guarantee Fridays 26 June 27 patidar samaj Wembley Park ma ratna 8 vage tickets booking mate विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860 280 6555।
10: Experience an unforgettable evening with the legendary Hari Haran.
11: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Kitty party ho ya business meeting ya koi khas celebration, ab har event banega stylish. At Vivek House Godfather and Co. Swadish khana, 5-course lunch, sirf £35. Zabardast ambience aur convenient car parking available at Holiday Inn Watford. To der kis baat ki? Booking ke liye WhatsApp karein 073-00-99-88-23.
13: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 02208767627।
14: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स कैफेज केटरर्स फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री 2025 कैटलॉग टुडे। कॉल ऑन 02085077900 or download the catalog from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
15: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस।
16: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड। अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरीज सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
17: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
18: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Forgotten memories refreshed. Like a gold.

मैं बंगाली छोकरा करूं आपको नमस्कार. मेरा नाम है सुप्रतिम. आई एम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह एंड आप सुन रहे हैं विंटेज गोल्ड ओनली ऑन लाइक अ गोल्ड. सो ये जो गाना आपने सुना फ्रॉम द ये मैं बंगाली छोकरा जो आपने गाना सुना दैट वाज संग बाय किशोर कुमार एंड आशा भोसले. और इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई थी वो थी अशोक कुमार एंड किशोर कुमार एंड पद्मिनी जी. लिरिसिस्ट थे कमार जलालाबादी साहब एंड म्यूजिक वॉज गिवन

0: by O.P. Nayyar Sahab. I hope you enjoyed that song. It is from the film Ragini from 1958. और उससे पहले रफ़ी साहब की मधुर आवाज़ जो आपने सुनी फिल्म मेरे सनम से 1965 की एक फिल्म थी जिसमें थे विश्वजीत और उनके साथ आशा पारिख. वो भी ओपी नैयर साहब की म्यूज़िक थी एंड sung beautifully by मोहम्मद रफ़ी. खैर ये थे हमारे बैक टू बैक गाने. आई होप यू enjoyed them. इफ़ यू डिड then डू सेंड अस अ व्हाट्सएप मैसेज. इट्स ऑलवेज गुड टू नो हाउ यू फाइंडिंग इट. हाउ इज़ योर वीकेंड स्टार्टेड? इट्स बीन अ वंडरफुल डे फॉर पीपल लिविंग इन द UK. बहुत ही अच्छा वेदर है. हीट वेव है जो चल रहा है बट इट्स बीन सनी, इट्स बीन ड्राई, इट्स बीन लवली. बहुत सारे लोग थे रास्ते में जब मैं आ रहा था स्टूडियो की तरफ. सो ऑब्वियसली एवरीवन इज़ इन्जॉइंग दिस वंडरफुल वेदर. आई होप यू हैव बीन इन्जॉइंग इट टू. विंटेज गोल्ड, जैसा कि आप जानते हैं, वी प्ले द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स फ्रॉम द 1960s backwards, so 60s, 50s, 40s and some which are there for tonight are from the 1930s as well. और मैं यहाँ आज हूँ सैंडी शाह की जगह. आज और कल दोनों दिन यू विल हियर माई वॉइस बट मोर इम्पॉर्टेंटली यू विल हियर सम वंडरफुल सॉन्ग्स. आगे बढ़ने से पहले अ बिग थैंक यू टू सरिता जी फॉर कीपिंग यू एंटरटेन्ड फ्रॉम 4 to 7 एंड शी विल बी बैक ऑन द हॉट सीट फॉर द सेम टाइम टुमारो. अगले 3 घंटे जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, इन्जॉय दीज सॉन्ग्स एंड सेंड मी योर मैसेजेस. लेट मी नो हाउ यू फाइंडिंग इट एंड हाउ यू आर इन्जॉइंग योर इवनिंग. कुछ मैसेजेस और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर गाना नमस्ते नमस्ते आने वाला है. सुनते रहिए विंटेज गोल्ड. मेरा नाम है सुप्रतिम.
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप इंडिया पैसा भेजना चाहते हैं through SBI, you'll get for every £1 that you transfer, 127 rupees and 30 paise. You can make the transfer via the branch or the website, or the best option, use the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है लाइक अ

0: पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते। आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग। दिस इज़ फ्रॉम द फिल्म पतंगा, जो एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। इसके हर गाने बहुत अच्छे हैं। ये जो गाना गाया था इसमें, इट वाज अ मल्टी स्टार इन टर्म्स ऑफ दिस सॉन्ग। इसमें थे सी रामचंद्र, जिन्होंने म्यूजिक भी दिया था इस फिल्म में। ही संग दिस सॉन्ग अलॉन्ग विद मोहम्मद रफ़ी साहब एंड सदाबहार शमशाद। आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग। ऐसे ही और भी बहुत सारे गाने आने वाले हैं, दे ऑन द वे। मेरा नाम है सुप्रतिम, आई एम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह। आप सुन रहे हैं विंटेज गोल्ड।
1: द हिल्टन सेल इज नाउ ऑन एंड इट डजंट साउंड लाइक दिस। इंस्टेड इट साउंड्स मोर लाइक दिस। एंड विद 20% ऑफ फॉर हिल्टन ऑनर्स मेंबर्स, बुक नाउ एट hilton.com। हिल्टन फॉर द स्टे। ऑफर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, टर्म्स अप्लाई।
2: ये है Leica Gold।
3: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
3: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
4: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
3: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
5: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th to 21st June वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर। फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए। रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें। वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF। फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com, कॉल 07932 623852।
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me.
8: Southall Travel, at all protected.
9: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ. 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code Leica10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
10: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
11: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन।
10: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स।
11: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
10: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल।
11: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट।
10: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड, कॉल 07300998823।
11: बुक योर टेबल टुडे।
12: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
13: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स।
12: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
13: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
15: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहे छे।
16: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग और स्टार टूर्स तमने लई जाई रहे छे आप पवित्र यात्रा पर।
15: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
16: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी साथे।
15: दर्शन पण अने यूरोप पण।
16: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ही बुक करो स्टार टूर साथे।
15: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
16: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
17: दिस ईद उल अज़हा आई स्टे क्लोज टू व्हाट मैटर्स विद रेमिटली, लाइक सेंडिंग अ लिटिल समथिंग टुवर्ड्स अम्मीज फेमस बिरयानी, वेयर देयर इज ऑलवेज रूम फॉर सेकंड्स। Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: Leica Gold.
18: लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे
19: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: थैंक यू टू डेरी वैली फॉर दैट फील गुड सॉन्ग. आई होप यू एंजॉयड इट, इट रियली फेल्ट गुड. ये 1946 की एक सुपर हिट सॉन्ग है. दिस इज़ फ्रॉम द फिल्म अनमोल घड़ी, जिसमें थे सुरेंद्र जी, नूरजहां और सुरैया, एंड म्यूज़िक दिया था इसमें नौशाद साहब ने. इसके बाद एक और बहुत ही बेहतरीन गाना, कम्प्लीटली डिफरेंट टेम्पो, गीता दत्त जी की खूबसूरत आवाज़ में, फिल्म का नाम साहेब बीबी और गुलाम. कहीं मजाइएगा, आप सुन रहे हैं विंटेज गोल्ड, मेरा नाम है सुप्रतिम.
0: Spring into the sunshine on Leica Radio Network.

0: तलत महमूद साहब की मखमली आवाज़, फिल्म का नाम आरजू, 1965 की एक सुपरहिट फिल्म। इसमें थे राजेंद्र कुमार और साधना जी, और इसके इट वाज रिटन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय रामानंद सागर जी। उन्होंने दूरदर्शन पे इंडिया में जो जो नेशनल टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टर है उसमें रामायण भी बनाई थी इन द 1980s। आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग। शंकर जयकिशन का ब्यूटिफुल म्यूजिक वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग। इसके बाद कुछ मैसेजेस लेकिन याद रखना, उसके बाद आ रहे हैं हेमंत कुमार मुखर्जी एंड आशा भोसले साहब, सॉरी आशा भोसले जी। सुनते रहिए विंटेज गोल्ड। मेरा नाम है सुप्रतिम, आई एम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह।
1: दिस इज द लाइकर रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Well, there were no matches in the IPL today, but tomorrow is the big one. Tomorrow is the finals between Gujarat Titans and Royal Challengers Bengaluru. 3 PM se shuru hoga match, kahi mat jaiyega, zarur dekhiyega, lekin saath mein suniyega Like a Gold.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: ये है Like a Gold. किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।

0: मैंने कहा था ना याद रखना, दैट्स द नेम ऑफ द सॉन्ग. ये फिल्म थी नागिन, जो 1954 की एक खूबसूरत फिल्म थी, और ये हेमंत कुमार मुखर्जी एंड आशा भोसले की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना. इससे पहले जो मैंने गाना प्ले किया था तलत महमूद साहब की आवाज़ में, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल, फिल्म आरजू जो गाना था, माई मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी, इट वॉज नॉट द 1965 आरजू बट इट वॉज 1950 आरजू. हमारी एक लिसनर है दक्ष शर्मा जी, उन्होंने ये नोटिस किया एंड दक्ष जी लेट मी नो दिस, सो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो एंड करेक्टिंग मी. इट वॉज एक्चुअली द फिल्म आरजू विच वॉज इनएक्टेड बाई दिलीप कुमार, कामिनी कौशल, एंड द सॉन्ग वॉज ब्यूटिफुली संग बाय तलत महमूद. इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे अनिल बिस्वास. इनफैक्ट कल अनिल बिस्वास जी की पुण्यतिथि है, इस डेथ एनिवर्सरी, एंड वी विल बी प्लेइंग एंड आई विल बी प्लेइंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम अनिल बिस्वास जी, एंड ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. तलत महमूद और अनिल बिस्वास की एक बहुत लंबी इनका एक रिश्ता था और बहुत बेहतरीन कहानियाँ हैं. आई विल शेयर दैट विद यू एंड इन विंटेज गोल्ड फॉर टुमारो नाइट. लेकिन इसके साथ हमारा फर्स्ट आवर ख़त्म होने की एक कगार पर है. I will see you on the other side of the news, but before that, there's a beautiful song from the film Patita, jo Hemant Kumar Mukherjee and Lata Mangeshkar ki awaaz mein hai. Sunte rahiye Vintage Gold. Mera naam hai Supratim.
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23.

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम।
0: बाजू

0: के डर से।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: थैंक यू टू डेरी वैली फॉर दैट फील गुड सॉन्ग। सदाबहार शमशाद की आवाज़ थी, फिल्म का नाम अनोखी अदा, महबूब खान की अनोखी अदा। इनफैक्ट 1948 की एक सुपर डुपर हिट फिल्म, बहुत ही बेहतरीन गाने हैं इसमें, अगर आपने सुने हैं, एंड आई एम श्योर सैंडी शाह वुड बी प्लेइंग दैम ऑन अ रेगुलर बेसिस। सुरेंद्र, नसीम बानो एंड प्रेम अदीब फॉर द मेन कास्ट फॉर दिस फिल्म, और ऐसा म्यूजिक और कौन दे सकता है नौशाद साहब के अलावा। आई होप यू एंजॉयड दिस, मेनी मोर टू कम, बट पहले कुछ मैसेजेस, उसके बाद आएगा कजरा मोहब्बत वाला। सुनते रहिए विंटेज गोल्ड, मेरा नाम है सुप्रतिम, आई एम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।

0: आशा जी और सदाबहार शमशाद की खूबसूरत आवाज़ें। फिल्म का नाम किस्मत, ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी जिसमें विश्वजीत और बबीता ने इनेक्ट किया, तो उबी नैयर साहब का म्यूज़िक था एंड आई होप यू इन्जॉयड द सॉन्ग। कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन गाना फिल्म पतीता से और मखमली आवाज़ तलत साहब की, सुनते रहिए विंटेज गोल्ड।
1: Vintage Gold with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: तो फिर तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज मुकेश जी एंड सुमन कल्याणपुरी वॉइसेस फ्रॉम द फिल्म मॉडर्न गर्ल. आई होप यू एंजॉय द सॉन्ग. इसके साथ ही हम आ रहे हैं अपने सेकेंड आवर के एंड पे. तो इसके बाद हम एक बहुत ही छोटा सा गाना सुनेंगे एंड देन वी गेट टू द न्यूज, बट आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द न्यूज.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and likeagold.com.

0: आधा है चंद्रमा रात आती। महेंद्र कपूर साहब की बुलंद आवाज़ अलॉन्ग विद आशा जी। फिल्म का नाम नवरंग, जो 1959 की एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। वी शांताराम द्वारा डायरेक्टेड एंड स्क्रीन प्ले रिटन बाय हिम, enacted by his wife Sandhya ji, who also is an absolutely exquisite dancer, jo jinhone isme bahut behtareen dance kiya is gaane pe Mahipal sahab ke saath. So that was the song you just heard, and right before that likhe jo khat tujhe, ye Rafi sahab ki khoobsurat awaaz jis pe the Shashi Kapoor aur Asha Parekh, और इसके म्यूज़िक इस पे म्यूज़िक दिया था शंकर जयकिशन साहब ने। आई होप यू एंजॉयड बोथ द बैक टू बैक सॉन्ग्स। ऐसे ही बहुत सारे और गाने आते रहते हैं ऑन विंटेज गोल्ड। मेरा नाम है सुप्रतिम, आई एम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह, एंड वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स टू द थर्ड आवर ऑफ द शो। अमेजिंग थर्ड आवर, मतलब वक्त कैसे गुजरा समझ ही में नहीं आया। आपके मैसेजेस बहुत ही प्यारे हैं, एंड आई बीन रीडिंग ऑल ऑफ देम एंड ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड टू एज मेनी एज आई कैन। कीप देम कमिंग इन, इट रियली इनकरेजेस अस टू प्ले द most beautiful songs, which we always do on Vintage Gold. In fact, we always do on Laika Gold. So, कुछ messages और उसके बाद एक बहुत ही अलग सा गाना जो आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा Laika Gold पे, but उसके पीछे एक बहुत बेहतरीन story है. So, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए Vintage Gold. मेरा नाम है सुप्रतिम, I'm sitting in for Sandy Shah.
1: This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 could get you 127 rupees from 0.30 paisa if you use the SBI Yono app, or if you send it through the branch. And if you do this before June, then you could win a 75 pound voucher, and this voucher is available or for eligible people every day. And when you spend over 1000 pounds, well, that's when you could win the voucher. And if you spend over 2000 pounds or send over 2000 pounds to India, then there is a chance of you winning 1 gram of gold every week. Terms and conditions of course apply, but it's a great offer.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की, फिल्म का नाम आई मिलन की बेला। इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने थर्ड आवर के एंड पे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ दो बेहतरीन गानों के साथ। एक संगदिल फिल्म से है और दूसरा अफसाना, तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ें रिस्पेक्टिवली। लेकिन चिंता मत करिए, मैं वापस कल आ जाऊँगा हॉट सीट पे फॉर विंटेज गोल्ड, और कल सुबह होंगे आपके साथ 7 बजे से दीप राजा गोल्ड ब्रेकफास्ट लेके। लेकिन गानों का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, वो चलता रहेगा ऑन गोल्ड नाइट्स। अपना रखिए ख्याल, अपने अपनों का रखिए ख्याल। आई विल सी यू अगेन टुमारो, गुड नाइट।
1: अप नेक्स्ट, नॉनस्टॉप क्लासिक्स ऑन गोल्ड नाइट्स ऑन लाइक अ गोल्ड।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: लाइका गोल्ड।
1: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 आवर लाइन।
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई, इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
4: Two businesses.
5: Same town.
4: Same service.
5: One appears on page one of Google.
4: The other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danu. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: KMB with Shanila presents London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show. Top designers from Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan and Middle Eastern communities showcasing stunning bridal collections live on the runway. Planning a wedding? Find everything under one roof. Plus, enjoy Qawwali Night by Ahmed Shah and group. Happening on Friday the 12th of June at the Willows from 1 p.m. till late. Tickets on Eventbrite. Call 07989-972879.
9: गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: लाइका गोल्ड ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी ट्रांसफर इनटू अ चांस टू विन व्हाइल मेकिंग योर मनी गो इवन फर्दर विद एसबीआई यूके
1: ट्रांसफर 1000 पाउंड्स और मोर इन अ डे टू एंटर आवर डेली ड्रॉ फॉर अ 75 पाउंड वाउचर
0: ट्रांसफर 2000 पाउंड्स और मोर इन अ वीक टू एंटर आवर वीकली ड्रॉ फॉर अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन
1: ट्रांसफर नाउ यूजिंग द योनो एसबीआई यूके ऐप ऑनलाइन बैंकिंग और सिंपली विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच
0: एंड दैट्स नॉट ऑल एंजॉय जीरो ट्रांसफर फीस एंड कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट्स
1: मोर वैल्यू मोर रिवॉर्ड्स मोर रीजंस टू चूज एसबीआई यूके
0: ऑफर वैलिड फ्रॉम द 4th ऑफ मे टू द 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
2: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
3: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
3: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
7: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે
8: બીએપીએસ મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર
7: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ
8: ફ્રાન્સ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ઇટલી અને જર્મની સાથે
7: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ
8: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે
7: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ
8: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન
9: યોર કોલ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અસ યુ આર કરન્ટલી નંબર 25 ઇન ધ ક્યુ
10: 25 સીરિયસલી
9: Sounds like Ojo time.
10: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
9: Sorry about the wait. How can I help?
10: You can help me celebrate. I won.
11: Feel the fun. Play Ojo.
12: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
13: Sari Raat, Bollywood classics ka saath. Sirf Laika Gold par.

पीरे बाप पीरे सूट पहन कर कैसा सूदे फांदे बाप पीरे सूट पहन कर कैसा सूदे फांदे।